0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना। प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी, और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बेन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें। सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश, अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। जी श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता मंडल।

0: जी, कार्यक्रम वनिता मंडल में हमारी सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ संगीता और मेरे साथ हैं
1: जी मैं प्रकाशा, और हम दोनों की तरफ से हमारी सभी सखियों को प्यार भरी नमस्कार। जी संगीता जी, देखिए मौसम थोड़ा सा सुहावना हो गया है संगीता जी, और गर्मी से थोड़ी निजात मिली है ना। जो हल्की फुल्की ये बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, उसकी वजह से मौसम में ठंडक तो आ गई है। और देखिए यही ठंडक सुकून जो है हर कोई चाहता है। अगर इतनी गर्मी में अगर थोड़ी सी ठंडक भरी फुहारें मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल प्रकाशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये तो बात हुई ना मौसम से जुड़ी हुई,
1: हाँ
0: कि जब गर्मी का मौसम है तो उसमें हमें कुछ फुहारों की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें अच्छा सुकून मिले हमें।
1: जी
0: तो इसी तरह से कुछ ठंडक चाहिए होती है हमारी अपनी जीवन शैली में भी।
1: बिल्कुल, जीवन शैली में देखिए अगर हमारी जीवन शैली की अब की बात की जाए तो कितनी बदल चुकी है ना संगीता।
0: बिल्कुल,
1: देखिए अगर हम आज के वक्त में किसी से पूछे ना कि आप कैसे हैं, किसी बहन से, किसी महिला से अगर हम ऐसे पूछते हैं
0: जी
1: कि क्या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी अगर उनसे लेना चाहें तो कितनी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम जो है वो बता देती हैं अपने बारे में, है ना।
0: बिल्कुल,
1: और इन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो जैसे PCOD है, थायराइड है, अनीमिया है, और वजन बढ़ना, ये सारी समस्याएं जो हैं वो हमारी बहनों में अगर अब वक्त में देखें तो ज़्यादा गंभीर बनती जा रही हैं।
0: बहुत ज़्यादा गंभीर बनती जा रही हैं। और इन सब का जहाँ तक जो मतलब कारण नज़र आता है वो यही है कि हमारी जो जीवन शैली है ना,
1: जी
0: वो उसमें हमने बहुत ज़्यादा ही चेंजेस ला दिए गए हैं। आधुनिक पर मतलब आधुनिक कहना तो चलो ठीक है, आधुनिकता आनी चाहिए,
1: हाँ
0: लेकिन हमने कुछ ऐसा अपना खान पान बदल दिया है, अपना रहन सहन बदल दिया है जिससे कि वो हम पर उल्टा ही असर डाल रहा है।
1: बिल्कुल। और देखिए जैसे कि मैंने कहा कि पहले अगर थोड़ा समय पहले, कुछ वर्ष पहले की बात करें हम, तो शायद इन चीज़ों के बारे में हम इतना जानते भी नहीं थे,
0: नहीं जानते थे
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: नहीं होता था इतना अक्सर, हर किसी में तो नहीं पाया जाता था। लेकिन अब तो देखिए अगर किसी को पूछेंगे तो ये सारी दिक्कतें मिल जाएंगी आपको हर
0: सभी
1: किसी
0: मिल
1: में, है ना।
0: जाएंगे
1: कोई
0: प्रकाश
1: ना कोई
0: जी।
1: दिक्कत जो है वो
0: बिल्कुल
1: होगी, है ना।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे अगर हम अपने माँ से पूछते हैं, अपनी मदर से पूछे हैं, या अपनी दादी वगैरह के बारे में सोचते हैं, दादी
1: हाँ
0: नानी के बारे में,
1: जी
0: तो उन लोगों ने कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी कुछ नहीं कहा,
1: जी जी
0: ठीक है ना। और आजकल तो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम अपने आसपास ही, आस पड़ोस में ही देख लेते हैं कि कितनी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, या कितनी महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी आपने प्रॉब्लम्स बताई वो तो आम ही बात हो गई है।
1: बिल्कुल जी। और देखिए सेहत जो है वो घर की दौलत होती है एक तरह से। अगर
0: बिल्कुल
1: आप सेहतमंद हैं तो हर चीज़ सही है, और अगर सेहत सही नहीं है तो फिर सब कुछ जो है वो गड़बड़ा हो जाता है ना। हमारा जीवन
0: जी
1: एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। तो सेहत का ध्यान रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है। और अगर आज के जीवन शैली की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा पारंपरिक तरीके से अपनी सेहत को सुधारना चाहें तो कितना अच्छा होगा ना संगीता।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारी पारंपरिक जीवन शैली है, योग है, आयुर्वेद
1: हाँ
0: है ना,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके साथ अगर हम अपने खान पान को भी जोड़ दें
1: जी
0: अच्छे तरीके से, तो ये सब, इन सब का जो संगम है वो हमारे सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाओं के ही शरीर और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए, बल्कि सभी लोगों के जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो काफी लाभदायक होगा।
1: और देखिए ना जिन्होंने इन चीज को अपनाया है, आयुर्वेद को और योगा को अपनाया है, उन्होंने वो दूसरे लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हैं, है ना।
0: बिल्कुल
1: और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो भी दूसरों की बजाय जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अपनाएं
0: बिल्कुल
1: पारंपरिक तरीके
0: जी
1: से, हमारे जो भी जीवन शैली है उसे अपना करके, और अपने जो आयुर्वेद से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग करके हम अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी
1: तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए।
0: बिल्कुल करनी चाहिए प्रकाशा जी। देखिए ना, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनकी मनोस्थिति जो है वो ऐसी होती है, हमारी क्योंकि एक तो हम अपनी भावनाओं को अधिकतर तौर से जो है वो खुलकर सामने नहीं ला पाती हैं, है ना। और उससे क्या होता है कि अगर हम अपनी खुल के बात नहीं कह पा रही हैं या कुछ नहीं कर पा रही हैं तो उसका असर हमारे हार्मोन्स पर बहुत ज़्यादा पड़ता
1: जी,
0: है,
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। और जो कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो इससे जुड़ा हुआ अगर हम ये सब अपना हम अपनी जीवन शैली जो है वो बदलें और अपना योगा को अपनाएं और अच्छा आहार अपनाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो हमारे मानसिक और तनाव पर भी काफ़ी अच्छा असर डालेगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि अब जब आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते, दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाते, या परिवार की बात करें, अपने बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हम बात नहीं खुलकर कर पाते, तो वो मन में कहीं ना कहीं रह जाती है बात, और वो हमें एक तरह से ये जो मौन कोलाहल है उसे एक तरह से पैदा करती है कि हम अपने मन में वो सोचते रहते हैं और छोटी सी छोटी बात को हम सोच

0: के ही इतना बड़ा बना देते हैं। तो जब हम किसी के साथ वो बात साझा कर लेते हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, अपने घर के जैसे कि दूसरे सदस्य हों, पति हो उसके साथ, अपने जीवन साथी के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। और कभी अब आपने महसूस हम सबने किया होगा कि जब हम ये बात अपने मन में रख के चलते हैं तो कितना बोझ सा मन पे महसूस होता है ना। लेकिन जब बात खुलकर बोल दी जाती है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी जाती हैं, तो हमें कितना हल्कापन महसूस होता है। तो यही है कि अगर हमारे मन में कोई बात है तो उसे ज़रूर कहें, क्योंकि कहने से ही कहते बात बनती है। तो कहकर अगर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो साझा हो जाती है बात, और फिर कभी ना कभी उसका हल मिलता है ना। और देखिए, दूसरों के साथ बात करने में, खुलकर बात करने में मन हल्का होता है, सुकून हमें कहीं ना कहीं मिलता है। तो ज़रूर हमें ये अपनानी चाहिए विधि,
1: बिल्कुल,
0: कि हम अपनी बात को जो है अपने मन में ना दबा के रखें, बल्कि उसे दूसरों के साथ व्यक्त करें।
1: बिल्कुल प्रकाशा जी। और देखिए ना, जैसे विशेषज्ञों के अनुसार भी प्रकृति के अनुरूप जो लिया गया आहार होता है
0: जी,
1: जो हमें प्रकृति से मिलता है नेचुरली, है ना, तो उसमें स्त्री स्वास्थ्य को जो है वो नई ऊर्जा और संतुलन देता है
0: जी।
1: और सीधी सी बात है कि किसी के मन को समझ पाना तो आसान नहीं होता ना, लेकिन उसे समझकर ही मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं। और जितना भी मतलब हमारी, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मानसिक जो हमारे तनाव होते हैं या अनिद्रा है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये बदलाव जो आते हैं हमारे महिलाओं के जितने भी शारीरिक जो बदलाव आते हैं उनकी वजह से भी ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इनमें जो है संतुलन बनाए रखना उनमें काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये सभी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हमारा आहार और व्यवहार जो है वो ठीक हो।
0: बिल्कुल। और सीधी सी बात है, अगर हमारा मन सही होगा तो हमारा शरीर भी सही होगा। उसका प्रभाव जो है वो एक सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है ना। लेकिन अगर मन कहीं ना कहीं उलझन में है या हमेशा हम कुंठित रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ना तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है और ना ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही है। तो अगर मन महकता रहेगा, खिलखिलाता रहेगा, तो हमारा शरीर भी सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को जो है हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ें, सकारात्मक चीज़ों के साथ जोड़ें, और ऐसे लोगों के साथ हम बैठें, बात करें जो कि सकारात्मक हों, अच्छी चीज़ें उनके जहन में हों, और बात जब भी करें तो वो बातें सकारात्मक हों। तो ऐसे ही हमें अपने मन को बेहतर बनाना है कि अपना मन जो है हमेशा खुश मिजाज हम रहें, उसे किसी भी तरह के दुर्भावों से कभी जो है वो अपने मन को व्यथित ना करें, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अब एक और बात है कि हम महिलाएं खास तौर पर अपने सौंदर्य को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर तो ज़्यादा रहती हैं, उनकी वो चाहती हैं कि हम खूबसूरत दिखें, है ना, और इसके लिए प्रयासरत रहती हैं हमेशा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर देखिए नैन नक्श अगर किसी के सही हैं तो उसके साथ साथ त्वचा जो है वो भी उसकी प्राकृतिक चमक जो है वो उससे झलकती है कि आप जो है वो अंदर से कितने खूबसूरत है। मतलब कि आपकी जो स्किन है वो साफ होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आप अच्छा आहार लें, है ना, आपका खान पान अच्छा हो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके उससे भी झलकता है, है ना, कि आपके बालों की ग्रोथ किस तरह से है। या कई बार होता है ना कि ऐसी चीजें हम अपने मन पे लेकर चलते हैं कई बार, तो है ना।
1: बिल्कुल प्रकाशा जी, क्योंकि इन सब के लिए भी जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमारी स्किन चमकनी चाहिए, त्वचा में निखार कैसे है या दूर से ही अच्छा लगता है, तो जो आहार से जुड़ी हुई आप कह रही हैं बातें, और क्योंकि वो आहार ही तो है जो हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है
0: जी।
1: कि हमारा रक्त जो है वो कैसा है, साफ है या नहीं है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि हम कैसा खा पी रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि जितना भी पिंपल्स हैं, एक्ने है या पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स हमें आ जाते हैं, तो ये सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
0: बिल्कुल, और ये हमें दिखाते हैं ना कि हम शारीरिक तौर पर कितने अंदर से हम कितने मजबूत हैं। अगर देखिए, अगर हमारे अंदर रक्त की एनीमिया की कमी होगी तो वो हमारे चेहरे पे छलकती है, हमारी आंखों के नीचे जो है वो उसके सर्कल आ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, गड्ढे आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित है, यानी कि हमारा हमें जो है हो सकता है एनीमिया की एनीमिया हो, रक्त की कमी हो, है ना। तो वो एक तरह से संकेत देता है कि हम जो है वो किसी न किसी हमें हम अपने आप को जो है वो अपना आहार जो है उसे बेहतर करना है,
1: करना
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: जरूरी नहीं कि आप हमेशा हर मतलब चीज के लिए जो है दवाएं ही लें, अपने आहार को भी आप बेहतर कर सकते हैं तो उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं।
1: और जैसे कि हम अपने शरीर को हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं, अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो भी आप खुद भी थकान महसूस करेंगे, थोड़ी सुस्त रहेंगे, और साथ में आपकी जो त्वचा है वो भी आपकी ढलकी हुई नजर आएगी।
0: जी जी।
1: तो हाइड्रेट रखने के लिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप सिंपल पानी पी सकते हैं, आप उसके लिए छाछ है, आंवले का जूस है, तरबूज है, आप आजकल तो गर्मियां हैं वैसे भी
0: जी।
1: तो आजकल तो ये ऐसे फल हैं जिनमें कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है,
0: बिल्कुल,
1: खीरा है, खरबूजा है, तो ये सभी चीजें जो है वो हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और अच्छा रह सकता है।
0: बिल्कुल जी। और देखिए ना, आजकल के वक्त की बात करें, जो ये आधुनिक शोध हैं इनमें ये पाया गया है कि योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी प्रक्रियाएं जो हैं वो स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ये बहुत बहुत ज़्यादा सहायक रहती हैं, है ना। और कई विकारों की रोकथाम जो है इसके द्वारा की जा सकती है। तो आयुर्वेद को जैसे कि हम बोलते हैं एडजुवेंट थेरेपी के रूप में भी इसे हम इसके रूप में महत्व दिया जा रहा है, तो आप अपनाएं ज़रूर इस चीज़ को, योग ज़रूर करें, प्राणायाम ज़रूर करें और पारंपरिक जो भोजन है हमारे उनको अपने ज़रूर शामिल करें, है ना। तो और साथ में देखिए नींद का महत्व, तो हम हमेशा जैसे कहते हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है, समय पर सोना और समय पर जागना, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं बेहतर जीवन शैली हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे समय तक जागे रहते हैं, हमारी स्क्रीन टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो गई, फ़ोन पे रहते हैं या टीवी देख रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और फिर सोने में हम उतना ही लेट करते हैं और फिर उठने में भी नहीं देरी, है ना। तो ये 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है, 8 से 9 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, लेकिन सही समय पर नींद लेना भी बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल प्रकाशा जी। तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत के साथ अपनी सखियों को सुनवाते हैं एक गीत भी।
0: जी आइए सुनते हैं प्यारा सखी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी प्रकाशा जी, और इस गीत के बाद हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम वनिता मंडल में अपनी सखियों से बातचीत करने के लिए।
4: जी बिल्कुल, और देखिए संगीता, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, है ना। देखिए कई बार होता है ना कि जब बच्चे कहीं जाते हैं, किसी मेले में जा रहे हैं या कहीं गए हैं बाजार, तो वो हमेशा जिद करते हैं खिलौनों की, है ना। खिलौने खरीदने के लिए वो हमेशा रहते हैं तैयार, और उसके लिए जिद तो करते ही हैं
3: जी।
4: हम खरीद कर ले भी आते हैं उनकी पसंद के खिलौने, कुछ समय तक तो वो उनके साथ खेलते हैं, और फिर घर में जो मिलता है ढेर, वो मिलता है वहाँ खिलौना का बड़ा सा अंबार, जो कि कचरे के रूप में बदल चुका होता है ना,
3: और वो भी प्रकाशा जी प्लास्टिक के रूप में।
4: हाँ, प्लास्टिक के रूप में। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि अपने, हमेशा बात करते हैं कि पर्यावरण के साथ हमने एक संतुलन बैठाना है और पर्यावरण के प्रति सोचना है, हम छोटी से छोटी कोई चीज़ सोचते हैं तो वो भी हमें वो सोचनी है जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके लिए खिलौनों की बात हम करें अगर, तो खिलौने भी वैसे हो सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
3: बिल्कुल,
4: है ना। प्लास्टिक के खिलौने जब बच्चे खेलने के बाद उन्हें जब फेंकते हैं तो वो सिर्फ एक कचरा होता है, और वो भी प्लास्टिक का कचरा। तो उससे बेहतर है कि हम ऐसे खिलौने बच्चों के लिए लाएं, और ऐसे खिलौने हम बाजार से उनके लिए ढूंढें खास तौर पे, क्योंकि हर जगह नहीं मिलते, और जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हमें ज़रूर उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बना भी सकते हैं हम खुद भी, जो कि पर्यावरण अनुकूल हों।
3: बिल्कुल प्रकाशा जी, क्योंकि देखिए ना, ये पर्यावरण अनुकूल जो खिलौने होंगे वो टिकाऊ भी होंगे, और बच्चों को जो है वो हमारी संस्कृति से भी जोड़ने के का काम करते हैं, और साथ साथ उन्हें प्लास्टिक मुक्त जो जीवन शैली है वो भी देते हैं, और उसमें बढ़ावा मिलता है। और साथ में, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पर्यावरण के अनुकूल खिलौने हों, तो और पिछले हम कुछ सालों में जाएं, या पिछली अपनी दादी नानी का देखें, या हम लोग भी तो देखते हैं, हम लोग भी तो छोटे थे तो हम भी तो मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं, है ना, या कपड़े की गुड़िया बना रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी मिट्टी, लकड़ी, बांस और अपना कपड़े जैसे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनसे बने हुए खिलौने जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, और उसके साथ साथ कचरे को भी कम करते हैं, और दूसरा अगर बच्चा, छोटा बच्चा भी उन्हें मुंह में भी डालता है तो भी उसे काफी फर्क नहीं पड़ता है।
4: हाँ, मतलब उसके
3: स्वास्थ्य पर जो है वो फर्क नहीं,
4: और देखिए कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाता है। स्थानीय स्तर पर हाथ से बने जो खिलौने होते हैं, देसी खिलौनों की बात हम कर रहे हैं, उनके उपयोग से जो है वो दूसरे जो खिलौने बाहर से हम लाते हैं, या परिवहन में लगने वाला जो ईंधन है उसके लिए जब लाते हैं कहीं से बाहर से, तो परिवहन में लगने वाले ईंधन की बचत होती है, और जिससे क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है, एक ये इसका फायदा हो गया। साथ ही साथ सांस्कृतिक जुड़ाव और शिक्षा से भी इसका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। स्वदेशी जो खिलौने होंगे वो बच्चों को अपनी जड़ों से, अपनी ऐतिहासिक कहानियों और सांस्कृतिक विरासत जो है से भी जोड़ कर रखते हैं।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जैसे हमारा गुल्ली डंडा होता था, लट्टू है, या फिर जब दशहरा आता है या अपना दिवाली आती है तो भी उस वक्त पर भी जो है धनुष बाण है, तीर कमान जो है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी संस्कृति से जो जुड़ाव रखते हैं, और इसके साथ साथ जो है स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थन मिलता है। जैसे कि देसी खिलौने जो हैं वो अपनाने से हमारे स्थानीय कारीगर जो हैं, यानी लोकल वोकल फॉर लोकल,
4: उसको बढ़ावा मिलता
3: जो है, बढ़ावा मिलता है ना, तो कारीगरों को भी, उन्हें भी फायदा होता है, ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है।
4: बिल्कुल, और देखिए ना, बात अगर करें कि मिट्टी से और कपड़े से और लकड़ी से कौन से खिलौने जो है वो बनाए जा सकते हैं, तो देखिए ना, हम बनाते थे छोटे छोटे बर्तन मिट्टी के बनाएंगे, है ना, या फिर जानवर और पक्षी, घोड़ा जिसमें हो गया, या चिड़िया हो गई, तोता हो गया, इसे बनाते थे, खूबसूरत रंगों से उसे रंग अच्छा सा सजाया जाता था और फिर वो हमारे खिलौने होते हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं गुड़िया या मूर्तियां हम बना सकते हैं, छोटे छोटे देवी देवताओं की जैसे मूर्तियां हम बनाएं, है ना, और कार्टून कैरेक्टर भी हम बना सकते हैं उनसे, मिट्टी से, मतलब ये बनाए जाने वाले खिलौने। और देखिए कपड़ों की अगर बात करें तो सॉफ्ट टॉयज कितना ज़्यादा चलन है ना, सॉफ्ट टॉयज का, टेडी बियर हमारे बच्चे खरीद कर ले आते हैं या फिर और चीज़ें, तो वो हम कपड़े से बना सकते हैं, है ना, तो वो जो है वो ना तो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं और ना ही हमारे बच्चों के लिए,
3: बिल्कुल,
4: तो ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और जिससे हम जो है वो अपने पर्यावरण को तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने जो स्थानीय हमारे जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था है उसे भी हम
3: बचा सकते हैं,
4: बिल्कुल, उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो बिल्कुल जी, ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम देसी जो खिलौने हैं हमारे उन्हें इस्तेमाल करें और बच्चों के लिए वही लाएं, है ना, जब भी वो कहता है कोई जिद
3: मतलब
4: करता है।
3: हाँ, कहने का मतलब ये है प्रकाशा जी कि जैसे हम अपनी पारंपरिक जीवन शैली को अपना रहे थे, आहार को अपना रहे थे, वैसे ही हमें अपने इन चीजों को, पर्यावरण से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें भी हमें अपनाना चाहिए।
4: बिल्कुल जी, और अब देखिए कार्यक्रम में वक्त है थोड़ा सा, तो एक और प्यारा सा गीत अपनी बहनों को सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं मिलकर ये खूबसूरत सा गीत
3: जी।
0: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी प्रकाश जी, और इसके साथ ही कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त भी हो चुका है।
4: बिल्कुल जी, और अपनी बहनों से अब लेते हैं इस कार्यक्रम से इजाजत और कहते हैं नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 12:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।

जी सैनिक भाइयों, कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म चाहत का ये गीत आपने अभी सुना। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी सैनिक भाइयों, और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं संपन्न होता है। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सफर

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूं मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराज़गी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं, अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने, बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोधी कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है, थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर हैं। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं, हे गर्मी तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया, देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया, वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे, गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे, ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती, गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा, लाग बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में। याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने, सूरज तपता धरती जलती गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा

बढ़ता आ रे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगा रे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज़्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं। क्या हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती है। एसी कूलर से ना दिल बहलता है, रात में ना नींद, हवा पानी सब बेअसर, बादल भी नदारद, प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ ही इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफ़ी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है यहाँ वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज़्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर 1 किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी, ये गर्म रेती, ये पांव नाजुक, अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है, तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है, मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल, कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में, या घने जंगलों में, या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है, तो आपकी कोई याद हो मीठी सी, अगर तो ज़रूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, 2 घड़ी भी चैन नहीं आता है। ऐसे में गगरे सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

0: विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन, गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने ये भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ़ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताज़ा कर देती हैं। और ताज़ा हो रहा है ये संदेश, गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ये आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने, और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज़्यादातर लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन इस मौसम का मज़ा बहुत है। कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी, मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखे हैं आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी, जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। आज 43 दिन में आज अच्छा इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटे साइज के कबूतर भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भंवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरे सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको। इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढल कर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज़ बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज़ इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से ज़रूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब। श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीज़ों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है, हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है बरसात के लिए, कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1,000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो। बाप रे, ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग 1 सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लायलपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफ़ी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1 2 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर, मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूँगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बाप रे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहाँ गाड़ी की ज़रूरत ना हो वहाँ पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीज़ें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना? गर्मी का मौसम निदाग काल कहा जाता है। यहाँ निदाग का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो ज़रा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

0: तू है, मेरा सांस भी है तू, आवाज भी है तू, मेरी धड़कन में तेरा ही गीत है। नया खेल है ओ नया मेल है, आजा छेड़े तेरा ना रे, चुप चुप जाना।
1: फिल्म चार मीनार का ये गाना है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा भोसले की आवाज़, विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूँ चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज़ धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, नीचे जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियाँ बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियाँ, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जीवन से गायब हो गई हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियाँ तो आना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उड़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी ज़रूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे, जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तो भी बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छाँव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी ख़राब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

देवानंद और साधना ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने बताई हैं बहुत सारी बातें गर्मी के बारे में। जब एसी कूलर नहीं था तो खस की टाटी खिड़की में टांग भिगोकर घर ठंडा किया जाता था। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मिट्टी के घर खपरेल वाले बहुत ठंडे होते थे, पेड़ पौधे भी खूब लगे होते थे। मेरी दादी वाला घर बहुत सुंदर था, पर पापा को तो पक्का घर चाहिए था ना। ओह, बड़ी शिकायत है इन्हें। असली गर्मी महसूस करनी है और प्रोग्राम की बातें समझनी है तो बाहर गर्मी में बैठकर सुनना चाहिए, रूम के अंदर एसी पंखे में बैठकर नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और श्रोता ने कहा है कि इंसान कितना स्वार्थी है, गर्मी के दिनों में सूर्य देवता से कहता तुम कब जाओगे और सर्दियों में सूर्य देवता से कहता है कब आओगे। बिल्कुल, जब अति हो जाती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हम सर्दियों में कितने इसरार से सूरज को बुलाते हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जीवन में जब जो होता है वो उस समय अच्छा नहीं लगता और बाद में याद आता है। हाथ से झलने वाले पंखों को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक श्रोता बता रही है कि 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था, खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयाँ आती थी उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयाँ नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे ज़मीन में पोछा लगाकर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज़ किन की है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना, और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज़ और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहां बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज़ मौसम का क्या बदला नहीं लगता? और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता की अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं? एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार।
1: The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on the 18th of next month. Supreme Court to hear plea against CBSE's 3-language compulsory study for class 9 students from July the 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counterterrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulides on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. In his joint statement, Prime Minister Narendra Modi said the friendship between India and Cyprus is not only strong but also future-oriented. He said over the past decade, investment from Cyprus to India has nearly doubled. He said with the India-European Union Free Trade Agreement, numerous new possibilities have emerged and the trust between the two countries has increased. Mr. Modi added that India and Cyprus aim to double investment flows again in the next 5 years.
2: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग द मीटिंग दे ऑल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज।
2: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: President of Cyprus Nikos Christodoulides said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year.
3: I feel exceptionally honored and privileged to be in Delhi for this state visit, and we stand together in marking another milestone in further strengthening the long-standing bonds between our two countries and in deepening and expanding our strategic cooperation.
1: Earlier in the morning, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on the President of Cyprus. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciated the positive sentiments and guidance for strengthening the bilateral ties between the two nations and India-EU cooperation. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realise the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The by-poll will also be held on the 18th of next month. The Supreme Court today agreed to hear next week a plea challenging the new CBSE policy making three language study compulsory for Class 9 students from July the 1st. Senior advocate Mukul Rohatgi mentioned the matter before a bench headed by Chief Justice Suryakant and comprising Justices Joymalia Bagchi and Vipul M. Pancholi. He said the PIL had been filed by students, teachers and parents. He said the new CBSE policy made two additional languages compulsory in Class 9 and will create chaos. He urged the court to list the matter on Monday. The Chief Justice said the case would be taken up next week during the miscellaneous hearing week. The Union Health Ministry has notified the inclusion of the drug pregabalin under Schedule H1 of the drugs rules to strengthen regulation and prevent misuse, particularly among youth. The decision has been taken in view of reports received from certain states regarding the misuse and abuse of pregabalin. The drug, which is prescribed for the treatment of chronic pain, neuropathies and certain neurological conditions, has reportedly been misused for its sedative and dissociative effects. The ministry stated that recent seizures of illegally stocked and unauthorizedly sold pregabalin have been reported from some parts of the country. The revised classification mandates that pregabalin can be sold only against a valid prescription issued by a registered medical practitioner. In Kerala, 7-time Congress MLA Trivanchur Radhakrishnan has been elected Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly in a historic three-cornered contest. The election saw candidates from the ruling UDF, the left and the BJP-led NDA for the first time in the Assembly's history. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
4: Ruling UDF candidate Thiruvanchur Radhakrishnan was elected as Speaker with 101 votes in the 140-member assembly. Opposition LDF candidate A.C. Mohideen secured 35 votes, while BJP candidate B.B. Gopakumar got 3 votes. This is for the first time the BJP has contested Speaker election in Kerala. The election for the Deputy Speaker will be held on June 1st. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Forces security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges, the force has consistently upheld the nation's pride.
5: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
1: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. Mr. Adhikari also met Defence Minister Rajnath Singh. In a social media post, Mr. Singh said, the West Bengal Chief Minister is a person of rich political and legislative experience. He expressed confidence that Mr. Adhikari will work towards taking West Bengal to greater heights. Minister of State in the Department of Space, Dr. Jitendra Singh, has expressed happiness as India's Chandrayaan-3 lunar mission has been honoured with the 2026 Goddard Astronautics Award by the American Institute of Aeronautics and Astronautics. In a social media post, Dr. Singh said the Chandrayaan-3 mission continues to make the nation proud. He noted that the mission has received the highest recognition in astronautics for its historic soft landing near the moon's south pole and its contribution to future lunar exploration. A Delhi court today deferred its decision till the 9th of June on framing charges against Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, his family members and others in the alleged money laundering case linked to the IRCTC hotel scam. The case is being investigated by the Enforcement Directorate and is based on a predicate offence registered by the Central Bureau of Investigation. The Delhi High Court today granted 3-day interim bail to Umar Khalid in the UAPA case linked to the alleged larger conspiracy behind the 2020 Northeast Delhi riots. A division bench of Justice Pratibha M. Singh and Justice Madhu Jain allowed his release from June the 1st to June the 3rd on strict conditions. The High Court said it was taking an empathetic view of the matter and granted interim bail for 3 days to allow Khalid to spend time with his mother. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on the 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said, in keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on the 1st of July last year. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana and Andhra Pradesh during the next 2 days. IMD has forecast hot and humid weather over Gangetic West Bengal and Odisha till tomorrow. The weather agency also forecast heavy rainfall in parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and south interior Karnataka till tomorrow. The weather in Himachal Pradesh has changed its course today and intermittent rainfall has been continuing at several places across the state since morning. This change in weather has brought some relief to people from the intense heat.
6: Light rainfall has been recorded in various districts including the state capital Shimla as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahol Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Centre Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The centre has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in 7 districts Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Line Kjærfelt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's 3-language compulsory study for class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
7: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
7: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
9: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
7: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
10: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए।

0: पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवनंतपुरम राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
3: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
5: मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज़ में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो?
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 3 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, राडार कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: आज जैव विविधता दिवस है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें।
2: हिमालयन जनकल्याण संस्कृति मंच और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वाधान में बिना किसी सरकारी अनुदान के हम वॉलंटरीली यहाँ पे एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थी जैव विविधता के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। विद्यार्थी

0: पेंटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैव विविधता के विषय में एक जन जागरूकता बढ़ाई जाए। जंगलों में आग लगती है, जैव विविधता हमारी नष्ट हो जाती है, उसमें जागरूकता क्रिएट करें।
1: राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
2: हिंदू संघर्ष समिति सनातन हितों और हिंदुओं के हितों के लिए लंबे समय से संघर्षरत है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। इस डेमोग्राफी की आड़ में क्या क्या चीजें पनप रही है, यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहां से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी व हवाएं चलने से लोगों को लू के थपेड़ों से मामूली राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और अगले 2 दिन भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
3: जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशंस देखने को मिली है, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है योग महोत्सव 2026, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
5: प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग विश्व भर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के सबसे विश्वसनीय साधनों में से एक के रूप में उभरा है। योग शब्द संस्कृत मूल शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना, जो मन और शरीर की एकता, विचार और कर्म की एकता, संयम व संतुष्टि, मनुष्य व प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि योग जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग के अभ्यास के लाभों के बारे में व्यापक जानकारी का प्रसार विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। इससे समग्र स्वास्थ्य क्रांति का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें उपचार की तुलना में रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। इस वर्ष देश में योग दिवस को योग महोत्सव 2026 के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर 100 दिनों की यात्रा के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण की 100 दिन की उल्टी गिनती का प्रतीक है। इसका उद्देश्य योग के विविध आयामों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य, कल्याण व शांति के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। इसके तहत विभिन्न आयु वर्ग और स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए गैर संचारी रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल को चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय ने वैश्विक भागीदारी में निरंतर वृद्धि के साथ 11 संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। योग केवल एक जीवन शैली नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अनुशासन है। ये मानसिक स्पष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। इसके लाभों ने लाखों लोगों को कोरोना महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी लचीलापन बनाए रखने में मदद की। गैर संक्रामक रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल शुरू करते हुए आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने कहा कि ये प्रोटोकॉल विभिन्न आयु समूहों और जीवन के विभिन्न चरणों के लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। इससे वे अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक जिम्मेदारी ले सकेंगे, शारीरिक और मानसिक लचीलापन बढ़ा सकेंगे और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने हवाई यात्रा के लिए योग प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया। ये विशेष रूप से तैयार किया गया 5 मिनट का एक कार्यक्रम है जिसमें बैठकर योगासन, श्वास व्यायाम और संक्षिप्त ध्यान शामिल है। विशेषज्ञों द्वारा विकसित इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य हवाई यात्रा के दौरान यात्रा संबंधी तनाव को कम करना, रक्त संचार में सुधार करना, मांसपेशियों की तकलीफ को दूर करना और मानसिक शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की 100 दिन की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने योगा 365 अभियान के अंतर्गत हैबिल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रतिदिन निशुल्क ऑनलाइन योग सत्र प्रदान किए जाएंगे। योग 365 का उद्देश्य व्यक्तियों को योग को दैनिक आदत के रूप में अपनाने में मदद करना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले निरंतर अभ्यास और गहन सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा। योग महोत्सव 2026 समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक नए वैश्विक आंदोलन का मंच तैयार करता है। कर्तव्य पथ से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को मजबूत किया है।
6: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 3:10 हुए हैं अब से लेकर शाम 4:59 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
7: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है?
8: दीदी, हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
7: अच्छा अच्छा।
8: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
7: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
8: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
7: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सकें बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास ज़रूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी,
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर पे हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: तो केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है।
1: हाँ,
0: जी, तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में

0: इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी, जिसके पास अवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए, हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई है बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की, आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए,
1: हाँ,
0: अपने बारे में
1: बस
0: बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है,
0: जी
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज
1: हाँ
0: आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी?
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या-क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी यानी बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं, अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने आप।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी, तो
0: जी
1: एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ,
0: जी
1: और छाया गीत, ये त्रिवेणी, सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात है।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के, और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, अब
1: हाँ
0: कहीं भी बैठे
1: हाँ
0: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
1: हाँ
0: लेकिन वो ज़माना, वो रेडियो का जो दौर था, वो ज़माना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना
1: हाँ
0: कल्पना
1: वही
0: जी?
1: साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ,
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है। हाँ
0: जी।
1: हाँ मतलब
0: और
1: बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला,
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, यानी सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
0: क्या
1: हमेशा।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर हैं हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ, तो
0: क्या
1: यानी
0: बात है।
1: सबको का। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल मैं 63 इयर्स की हूँ अभी,
0: जी जी जी
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या
1: मतलब
0: बात है
1: फ्री हैं एकदम, तो
0: जी।
1: मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, तो बड़ा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: ये सब
0: लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं, इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध
1: जी
0: भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश, छाया
0: जी जी जी
1: गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे
1: है।
0: बात करके। और
1: जी
0: अच्छा, ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है,
1: बिल्कुल, खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से
1: नहीं,
0: खेल
1: मैं
0: पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा, हेल्दी
0: जी
1: रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें। हेलो
0: जी
1: सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता
0: क्या बात है, आप हमारे
1: है।
0: विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह।
1: जी
0: और
1: जी
0: आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा, किनारा
0: क्या बात है
1: फिल्म से है। जी
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम घूम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि
1: जी
0: आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: बिल्कुल। नाम

0: मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
0: मैम, मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
1: जी।
0: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए।
1: जी।
0: और मेरी सास का नाम सुमन है
1: जी।
0: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
1: जी जी
0: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये
1: जी,
0: है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: जी। मेरा नाम आशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है,
0: जी
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान हैं, जो वहाँ की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली।

0: बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दरक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का वादियां मेरा दामन ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: जी
1: हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी,
1: और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे,
0: जी,
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन
1: हाँ
0: से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम,
0: जी
1: त्रिवेणी, काया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा,
0: जी
1: प्रासंगिक कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजुल

0: सी सरलता।
1: क्या
0: ये
1: बात।
0: बात
1: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
0: मिस मेरी चिंता सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मैरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: बीच हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला, बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफ़र तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी ज़रूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज़ ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द

0: दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपये की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपये नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।
1: जाने वालों जरा

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नज़र संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूं। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूं, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

अब मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरी बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखी

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुँह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ, एक टीचर

अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब बात करते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युव मंच। शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नए पुराने फिल्मी गीतों के संगम पर आधारित कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर शाम 6:05 पर।

0: श्रोताओं, शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई स्थानीय बोली में सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हिंदी समाचारों का समय रहेगा शाम 7, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनिएगा हिंदी समाचारों के बाद। शाम 7:25 पर सुनेंगे कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 7:45, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:00 से लेकर रात्रि 8:44 तक और फिर रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 10 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। समाचार संध्या का आज का अंक सुनिएगा रात्रि 8:45 और रात्रि 9 सुनेंगे News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे। रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित नियमित कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर हाजिर होंगे आपके रेडियो सेट पर रात्रि 10:30। सभा के अंत में देर रात 11 आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी समाचार। और अब समय है भजन संध्या का, उससे पहले आइए सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: RBI कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Today we have Dr. Pramod Sinha, consultant physician from Dr. Sinha Healthcare Center, Mandi. Doctor, on World Hypertension Month, can you briefly explain what hypertension is and what simple steps people should take to stay safe?
7: Hypertension means

श्रोताओं तुहां सुनी करनैल राणा री आवाजा च भगवान राम री प्यारी प्यारी भगती रचना। चला हुण सुनदे धीरे शर्मा री आवाजा च ये अगली भगती रचना।

आकाशवाणी राय हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz ते तुहा सुनी कर दे कार्यक्रम भजन संध्या। हुण सुन दे कार्यक्रम वारी आखरी पक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवमंच।

दैनिक कार्यक्रम युवमंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को संगीता की प्यार भरी नमस्कार। तो जानकारियों के साथ और कुछ गीत संगीत के साथ हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम युवमंच, और आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। और आज के कुछ चुनिंदा विषयों के साथ हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जी हाँ दोस्तों, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, जल स्रोत और प्राकृतिक तंत्र सभी जीवन के लिए जरूरी है। कहा जाए तो जैव विविधता है क्या? इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, उनके रहने के प्राकृतिक स्थान और उनका आपसी संबंध। उदाहरण के तौर पर हम लें कि अगर मधुमक्खियां कम हो जाएं, तो परागकण प्रभावित होगा, जिससे खेती और भोजन उत्पादन पर असर पड़ेगा। अगर जंगल कम होंगे तो कई जानवरों का जीवन संकट में आ जाएगा। तो इसलिए इन सब में संतुलन बना होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, क्या आपने अपने आसपास पहले की तुलना में पक्षियों की संख्या में बदलाव देखा है कभी? क्या हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनमें कुछ कमी या ज्यादा मात्रा पाई जा रही है या नहीं, और अगर कमी हो रही है तो क्यों हो रही है, किन कारणों की वजह से हो रही है। हो सकता है उन कारणों की वजह हम लोग ही हों। और बात की जाए कि जानवरों के प्रति दया करना क्यों जरूरी है, तो देखिए, पशुओं के प्रति दयालुता का भाव रखना कई कारणों से जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम पशु भी मनुष्यों की तरह संवेदनशील प्राणी हैं, जो दर्द, भय और आनंद जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं। दोस्तों, उनके प्रति दयालु व्यवहार करके हम उनकी पीड़ा और सुख की क्षमता को स्वीकार करते हैं। और दूसरा, पशुओं के प्रति दयालुता स्वस्थ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है। जब हम पशुओं का सम्मान और देखभाल करते हैं, तो हम जैव विविधता और प्रकृति के संतुलन में योगदान देते हैं। पशुओं के प्रति दयालुता हमारे सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है। दोस्तों, यह करुणा, सहानुभूति और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देती है। तो हमें जानवरों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे संवेदनशील प्राणी हैं, जो दर्द और खुशी महसूस करते हैं। उनके प्रति दया और करुणा न केवल उनका जीवन बचाती है, बल्कि इंसानों को भी एक बेहतर और संवेदनशील इंसान

0: आसान बनाती है। सभी बेजुबान जीव दर्द और खुशी महसूस करते हैं। उनके साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना हमारी सबसे बड़ी मानवीय जिम्मेदारी है। अब बात की जाए कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो कुछ क्रियाशील कदम हैं, जैसे कि भोजन और पानी। तो दोस्तों, गर्मियों में छतों पर पानी का बर्तन रखें, आवारा जानवरों जैसे कुत्ते, गाय, बिल्ली आदि के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, और यही काम हम पक्षियों के लिए भी कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में तो बहुत जरूरी होता है कि कुछ बर्तनों में आप पानी और उनके दानों की व्यवस्था करें। उसके अलावा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उन्हें कभी भी लाठी से ना पीटें या परेशान ना करें। यदि कोई जानवर घायल है तो तुरंत स्थानीय पशु कल्याण संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उन्हें गोद भी ले सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो किसी भी दुकान से खरीदने की बजाय सड़क के किसी बेसहारा जानवर को हमें अपनाना चाहिए। और दोस्तों, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्थानीय जैव विविधता और वन्य जीवों के बारे में भी सीखना, यह सभी कार्यशील काम हम कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात, आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी जानवर की, पक्षी की या किसी पेड़ पौधे की मदद की है? जी हाँ, पेड़ पौधे की भी, क्योंकि जब आप किसी कटते हुए पेड़ को बचाते हैं या किसी छोटे से पौधे को लगाते हैं तो वह उनकी मदद ही होती है। और आप पूछ सकते हैं कि आप कितना वक्त सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो क्या सोशल मीडिया का उपयोग आपने प्रकृति संरक्षण के लिए भी किया है या नहीं? तो ये सब बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जैविक विविधता केवल जंगलों की ही बात नहीं बल्कि हमारे भविष्य की भी बात है। और जब युवा प्रकृति और जानवरों के प्रति दया, करुणा और जिम्मेदारी अपनाते हैं, तब एक बेहतर समाज और स्वस्थ है और स्वस्थ पर्यावरण बनता है। तो प्रकृति की रक्षा जीवन की सुरक्षा, और यही युवा शक्ति की सच्ची पहचान है। तो दोस्तों, इसके साथ ही लेते हैं कार्यक्रम में एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम यू मंच में हाजिर है फिर से विषय लेकर करियर। दोस्तों, आज के समय में करियर एक लगातार बदलती हुई यात्रा बन गया है, इसलिए सफल होने के लिए समय के साथ खुद को ढालना आना चाहिए। और जब बात हो सही करियर चुनने की, तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आज नौकरियां और काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। मशीनों और डिजिटल तकनीक की वजह से कई काम नए रूप से लिए जा रहे हैं, और भविष्य में युवा ऐसी नौकरियां भी करेंगे जो आज मौजूद नहीं है। इसलिए बदलाव होना अब सामान्य है। ऐसे समय में सिर्फ कौशल और नौकरी के बारे में सोचना काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या सच में महत्वपूर्ण है। जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं और बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं, वे आगे बढ़ने में सफल होते हैं। दोस्तों, इसलिए आज के समय में सीखते रहना चाहिए और खुले विचार रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कुछ बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि उद्देश्य को दिशा सूचक के रूप में देखें। जब जीवन या करियर की समझ नहीं आती तो कि क्या करना है और क्या नहीं, तब आपके अपने मूल्य सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की मदद करना या नई चीजें सीखना। ये मूल्य आपको सही फैसले लेने में मदद करते हैं, चाहे विकल्प कितने भी हों। आपके मूल्य बताते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेते हैं तो मन में संतोष और आत्मविश्वास बना रहता है, और इससे मुश्किल समय में भी सही दिशा चुनने में आसानी होती है। इसके साथ साथ वही करें दोस्तों जो खुशी दे। जी हाँ, यह जानने की कोशिश करें कि आप किस काम में सबसे अच्छे हैं और अपने कौशल कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। ऐसे काम चुनें जिन्हें करके आपको खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास महसूस होता हो। अपने जीवन और करियर के अब तक के अनुभवों से सीखें और समझें कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जरूरत पड़े तो किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। नई चीजें सीखना और खुद को बेहतर बनाने की आदत बनाएं। और युवा दोस्तों, हालात के साथ खुद को बदलें। आज के समय में करियर एक ही रास्ते पर चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलने वाली यात्रा का रूप ले चुका है। इसलिए सफल होने के लिए व्यक्ति को समय के साथ खुद को भी बदलना आना चाहिए और कई परिस्थितियों के अनुसार ढालना आना चाहिए। इसके लिए अपने भविष्य की सही योजना बनाना, सोच समझ कर फैसले लेना, नई चीजें सीखने की इच्छा रखना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। यही गुण आपको बदलते करियर दुनिया में आगे बढ़ने और मजबूत बने रहने में मदद करते हैं। आप रोज के कामों को अपनी अंदरूनी इच्छाओं, रुचियों और मूल्यों के अनुसार करते हैं, तो आपका काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि उसमें आपको अर्थ और खुशी भी मिलती है। जब आप वही काम करते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है, तो आप लंबे समय तक उसमें टिक पाते हैं और थकान या ऊब महसूस नहीं करते। इस तरह आपकी पेशेवर जिंदगी ज्यादा स्थिर, संतोषजनक और लंबे समय तक चलने वाली बनी रहती है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम अपने ध्यान में रखें और अपने साथ लेकर चलें, तो हम सफल हो सकते हैं। तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम यू मंच में अब वक्त भी हो चुका है कार्यक्रम को संपन्न करने का, लेकिन चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक गीत, और शुभकामनाओं के साथ संगीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: the Telelock app, website www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग मंच आकाशवाणी का। ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर।
4: Today we have Dr. Pramod Sinha, Consultant Physician from Dr. Sinha Healthcare Center, Mandi. Doctor, on World Hypertension Month, can you briefly explain what hypertension is and what simple steps people should take to stay safe?
5: In hypertension means that your blood pressure stays high, usually 140 by 90 or more. The problem is most people feel normal as there is no particular symptoms of the high blood pressure, and so it is silently damaging the heart, brain and kidney over time. Check your blood pressure regularly at a clinic or with a home monitor. Don't rely on just one reading, you should take multiple readings, and preferably the BP should be taken while sitting in the chair and on the table. And if it stays high, you should consult the doctor.
4: Issued in public interest by Alchem Laboratories.
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश के लोकायुक्त चंद्रभूषण बरोवालिया ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बरोवालिया ने राज्यपाल को लोकायुक्त कार्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संस्था की कार्यप्रणाली व जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कविंद्र गुप्ता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकायुक्त संस्था की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन को सुदृढ़ बनाने में लोकायुक्त की भूमिका अहम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्था भविष्य में भी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जन विश्वास के साथ अपने दायित्व का प्रभावी निर्वहन करती रहेगी। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और तीन राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
1: 20, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शन होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्लूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई, जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
2: जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशन देखने को मिली है, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के सफ़र सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके मनोरंजन के लिए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के झूमते तराने लेकर हाजिर हैं आपकी अपनी रेडी दोस्त आरती आपके साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आप बने रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद फिल्म का ये गीत सुना। आवाज़ थी मुकेश कुमार की। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रेम कहानी से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: मैं तुझे प्यार

भी तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो।

0: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने। श्रोताओं, कार्यक्रम में समय है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। Make some noise! Make some noise! Make some noise!

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी को और कार्यक्रम चल रहा है सफर सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम में समय है एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म फन्नी खान से ये गीत सुना। आवाज़ थी सुनिधि चौहान की। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फोर्स से। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल व अय्यर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफ़र, सुहाने गाने नए पुराने। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: जीतू। ओ जीतू भाई, ओ
1: हाँ जी हाँ
0: मोया कुतुबड़े या
1: जी।
0: तू?
1: ओ नमस्ते भाभी, जमुना भाभी जी नमस्ते। आई जो जी आई जो आ ब्रंडे आई जो हाले तो धुप्पा देखा बाहर थोड़ा थोड़ा ना जानता जी सामणिया बजा भी संजा ताले गर्मी बड़ी ही आज दिने बाहर ना कने थोड़ा थोड़ा बदल जे आ ना इन्हें और गर्मी करी थी।
0: ओ मोया सह तो ठीक है, पर हुण इस टाइम तक खरा है दिख मौसम।
1: हाँ
0: इन्हीं बड़ी गर्मी मना ना तो बड़ी भार लगदी।
1: हाँ वो मैं
0: ए ले
1: थोड़ा
0: पकड़,
1: छोड़िया जे खबर रही ई के लिए आई डब्बे च भला है
0: ओ ले
1: आप।
0: दिखी ले तू क्या ले
1: ओ
0: आई।
1: हो ओ भैया देखा लसूड़े ना चार हैं लसूड़े ना डाल लगी ना गणस तपे देख कहीं कुछ कदी सब्जी कदी चार चार पाई लिया है
0: मैं
1: नवा।
0: बोले दई आंदी ना जीतू के भाई, ये भी कने भाई गर्मी भी बड़ी मनांदा ना तू, ते ए खरा
1: हाँ
0: हुंदा मैं आलू अला ते बचाव करदा ए।
1: ओ मी ये देख चार पजवाई तो हूँ कुती लगनी मुझे गर्मी हूँ तो पे देख इं चारा देखी कहीं है ठंडक पई गई है पे देखो मौसमी चीजा होंदिया ना कने जिया प्राकृतिक होंगी भी देखे एडा बड़ा डाल लग्या तू हरे अंगणा तो पे देख अपने आप प्राकृतिक तरीके ने लग्या कर दी ये चीज़ है ना कने बिल्कुल पे देख ठंडी हुई चार लंदे तो और भी
0: हाँ
1: ठंडा होना।
0: कने जरूर खाना चाहिए है मैया, कने चार तो दिख लंबे टाइम में तक चली पौंदा ना। सब्जी तो बनानी पे होनी कि दू दिन बाद है हो ही आंदी सब्जी खत्म,
1: और
0: पर चार जे ऐसा है इस रखी ले तू कितने टाइम ही चाहे।
1: और देख मी गर्मी बड़ी भरी थी आज दिन भी केड़ा थोड़ा थोड़ा लगे नहीं हल्का हल्का बदल था आसमान ना चित का ना
0: पर
1: पर
0: फर्क नहीं लग्या पे
1: हाँ
0: गर्मी है ते।
1: फर्क नहीं लगा पर दिया 21 दिन तो थोड़ा जी ना 1-2 डिग्री घट ही रहा तापमान है
0: हाँ
1: ना।
0: सह तो मैं भी दिखा दी पे थोड़ा फर्क तो पे है पे।
1: फिर दिया 2-3 दिन पहले तो फिर दिख मी 40 पूजी गिरा था पर आज जी अधिक तापमान नरी करो गल ना तो अधिकतम रे आराम 36 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम रे आराम 24 डिग्री सेल्सियस।
0: हाँ पे तो थोड़ा जहा फर्क जे ऐसे पे है ना, कने इन्हें भी एड़ा बोला देते पे उपले जड़े लाग के ना तीना च जे ऐसा मौसम खराब रहना तो पे तीस दासर जे ऐसे थी भी थोड़ा जहा दिखने जो मिलता पे है ना।
1: हाँ बोला रहे पे ऊपर दिया आंधी तूफान जैसे चली सकता बारिश भी हो सकती उच्च पर्वतीय क्षेत्रां च ना कने इत्थे पे मैदानी इलाके ते पे ई लू चल रही अजकले
0: हाँ
1: आ।
0: बड़ा भारी बुरा हाल है लूआ ने, कने लूआ ते बचने वास्ते दिख पे लसूड़े होइए। फिर मैं आम हुंदे ना सै अग्गी च भुनी ने तिना दा माणी बना ना, तब बोलते
1: हाँ
0: पे
1: वो
0: ई लूआ जो
1: भैया
0: पूजी ने हुंदे।
1: हाँ वो भाई सियाने बनाते थे हाँ हरियाले भी बनाए लेंदे से पई देखो पुन्नी ने तीना बनाने फिर इस तरह से बोआलना फिर
0: हाँ
1: पई
0: कच्चा माणी
1: आहा
0: बोलदे इस जो
1: हा अजकले
0: ना,
1: तो पई
0: कने
1: देख।
0: ये बड़ा खरा हुंदा जियां कच्चा प्याज
1: हाँ
0: पाना इस च, कने दियां अजकल कच्चा प्याज भी खाना चाहिंदा।
1: बिल्कुल भाई देख सियाणे जी है ना बड़े तरीके ने बना रही होंगे ये चीज़ा ना एक तो स्वाद भी देख गर्मियों संजा पे आगा रोटी खानी तो पई तरसियाइया बगैर नहीं खवा दी आए है
0: हाँ
1: ना
0: चटनियां चुटनियां मन
1: थोड़ा
0: करा
1: तीन
0: दा सी, सोचा है पे
1: चटनियाँ।
0: पुदीने
1: हाँ
0: वाली चटनी मिल रहा है, इमली वाली या कुछ पे ये
1: हाँ
0: अड़ा जाए
1: ठंडी ठंडी
0: ना।
1: चीज़ा हो कहीं तीन चटनी वगैरह बनी दी हो ना देसी चीज़ा की तो पे आ मजा आई जाता बुकड़िया दी चटनियाँ भी है।
0: कने मैं दिख अजकल पे माला दा भी केड़ा बुरा हाल है ना। हुण सोचदे ना भी चार ना छड़िए तो दोपहर एड़ा भर धुप आंदा तां नहीं नहीं हुंदे, कने सवेरा भी जियां भगतें छड़ी ने थोड़ा 9-10 बजे तो बनना पौंदे।
1: कने पे देखा अजकल दिया तापमान पर दिरा लू चलाई आई उमस इतनी ज्यादा हुई है ना तो पे पशुआ चो भी तिया है बोलते ना पे गर्मियां रबड़ पे तनाव महसूस हुआ हाँ जो कुछ
0: तीन
1: एड़ा
0: जो भी
1: पशुआ
0: हुंदा
1: चो भी होंगे यार।
0: और मैं तो दिख भी दो दो बारी नु आ दी अपनी मैसी जो ना, कने उपरा ते पानी भी भाई बड़ी बड़ी दसना पौंदा, कह कि त्याईया भी छोड़ छोड़ ही हो जाए। हुण एड़ी भारी गर्मी है आपू जो बथेरी लगा दी। हाँ किन्ना पानी

0: किसान कने बागवान भाई भैणा, हुण तुसां जो जानकारी देनी सब्जी मंडी हमीरपुर ते मिली दे फलां कने सब्जियां दे थोक भाव दी। जी सारे ते पहले गल करिए आलू दी, आलू रिया 8 ते 13 रुपये प्रति किलो, प्याज रिया जी 18 ते 22 रुपये प्रति किलो, गोभी अज रही 35 ते 40 रुपये प्रति किलो, कने बंद गोभी रही जी 14 ते 15 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च दा भाव रिया जी 20 रुपये प्रति किलो, घी अज रिया 15 ते 20 रुपये प्रति किलो, कने भिंडी रही जी 20 ते 25 रुपये प्रति किलो, टिंडा रिया 20 ते 25 रुपये प्रति किलो, करेले की गल करिए करेला रिया जी 25 ते 30 रुपये प्रति किलो, धनिया आज रिया जी 70 ते 80 रुपये प्रति किलो, कने टमाटर रहे 14 ते 15 रुपये प्रति किलो, राम तोरी आज रही जी 40 ते 45 रुपये प्रति किलो, कने खीरा रिया 18 ते 30 रुपये प्रति किलो, बैंगन रह जी 28 ते 30 रुपये प्रति किलो, कने अदरक आज रिया 140 ते 150 रुपये प्रति किलो, फ्रास बीन रही अज 90 ते 120 रुपये प्रति किलो। हुण गल करनी है असां फलां दी, तां फलां च जी केला रिया 450 ते 500 रुपये प्रति डब्बा, सेब रह जी 140 ते 150 रुपये प्रति किलो, अनार रह 180 ते 220 रुपये प्रति किलो, कने मसम्मी अज रही जी 85 रुपये प्रति किलो, पपीता रिया जी 50 रुपये प्रति किलो, कने तरबूज रिया अज 12 ते 15 रुपये प्रति किलो। किसान कने बागवान भाई भैणो, हुई थी जानकारी सब्जी मंडी हमीरपुर ते मिली दे फलां कने सब्जियां दे थोक भाव दी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस पहले भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, सुखविंदर सिंह व साथियों की आवाज़ों में फिल्म अम्बा का ये भक्ति गीत सुना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अधिकार से। आवाज़ है आशा भोंसले की।

0: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम में समय है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

किसी का उसका होके।

श्रोताओं, अभी आपने गीता दत्त व साथियों की आवाज़ में फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का ये भक्ति संगीत सुना। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां।

0: लै मिया शांति पेई दिख, बड़ी शैल हवा ही चली ना आंगने, कने तेने नींबू पानी भी पियाया पेई, ते कोरे घड़े दा पानी बनाया होगा तै, कने बड़ा स्वाद लग्या मिंजो ठंडा।
1: हाँ मी देख कड़ोली लंदी रही ना अजकल, तो सही देख मिट्टिया रही तो पई दिखती है मिट्टिया रहा स्वाद बड़ा छ्याल।
0: हाँ करे दिख
1: हाँ
0: पे तै पानी रखे ना थी पक्षियां यो, इत मैं चिड़िया ची ची ही कराई हैं पहले ना, हूं तो बड़ी ही आलने च, पर बड़ी सोहनी ची ची ही लगाई मैं दिख, पंछी भी ना पे दिखी लेंदे कि कुती जी पानी रखे है तो तिथि है कट्ठे हो जाते है ना।
1: ओ मी ये देखती जो कहानी सुनांदा ना पे होया डा पई अहें देखतियां बाहर बरंडा पाया था है,
0: अच्छा।
1: फेरी थी उन बरंडे जो रखा है पखे जो जगह है ना तेड़ी रखी रही थी, फिर से जे पखे जो जगह रखी रही थी तिथि लारी से लोहे री कौली, फिर तिहा लगी रहा कुंडा, फिर तिथि क्या हुआ इसे एक चिड़ी लगी लुखने बड़े दिन पहल की, फिर एक दो वारी देखी है मैं क्या पेथी थल्ले बरंडे बैठी रहा केड़ा पक्षी कुद खाते हुआ, फिर एक दिन राती कुदरती उठे हैं तो अहें देखी भी देखी थी राती चिड़ी रे आ कराई,
0: अच्छा।
1: फिर मैं ये देख तिहाड़ी बड़ी दिला जो की हुई मैं क्या देख पे किया रही, फिर देखती है जो मैं से तीन आले भी मिलते अजकले रेडीमेड तेड़ा भी लंदे आ गत्ते पेटियां लाई, तो देख और भी पक्षी आए अखा बखा रहने है ना, तो घर रे देख बखा खा जो मैं देख आले बना रहे कने अंगना रे सामने देखे पानी पीने जो लटकाए रहे थे पेड़ा ने,
0: हाँ
1: तो
0: मैं
1: भाई
0: दिख,
1: आई आंदे देख बड़ी छाल चीं चीं करते तो भी बड़ी शांति मिलती आई।
0: हाँ कने खरी गल है दिख, मैं भी रखे ना पानी जिया
1: हाँ
0: घड़ा टूटी गया था सही उपर की, कने ताजा पानी भरी दिंदी मैं रोज, ते तिथि भी सह पंछी पी आंदे पानी ना, पर मैं ही सोचा दी ही मैं लिया दिख अजकल इन्नी भारी गर्मी है, ते जिया जी हां जो त्या लगती जिया पशु पक्षी होंगे तिना जो भी लगती होंगी है ना।
1: बिल्कुल पे देख मिये पशु पक्षी भी दिया बोलते भी प्रकृति का नियम है, देख प्रकृति च मनुष्य पशु पक्षी की दूजे पर निर्भर है सारे है ना, कने पे तिया जो बोलते भी मानव सभ्यता का विकास होया तो पशु पक्षियों का योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा या
0: हाँ कने दिख पे शुरू ते यहाँ दिखते पे अहन आदमी कने जेड़े भी पशु पक्षी हैं ना तिना दा एक संबंध है, कने जिया बोलते ना पर्यावरण च इना दा एक बड़ा भारी रोल है, जिया जी आदमी दा तिया ही पशु पक्षियों दा भी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल पे देखो पुरुण कुछ टाइम तक क्यों पे देखो मानवीय गतिविधियां दे कारण जो है पर्यावरण जो भी नुकसान पहुंचे रहा तो सौगी भी जेड़ा वन्य जीवन आ रहे पक्षियों का जीवन आ तो पे ये भी थोड़ा संकटा चाई गिरा या चदियां बोल दे पे बैलेंस बनाना ना
0: बड़ा
1: बड़ा
0: भारी
1: भारी
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है,
1: हो गिरा या।
0: हाँ ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि पशु पक्षी जेड़े हैं सह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, मतलब चीजा नहीं है ने, एक मतलब सजीव प्राणी है ना भी जान है, इन्हों दी भावना जो जे ऐसा हाँ जो समझना चाहिए।
1: बिल्कुल पे दियां बोल दे पे वैज्ञानिक अध्ययनों च भी प्रमाणित हो चुकी रहा कि जानवर कने पक्षी जे आ तिन्हां च भी भय खुशी पीड़ा कने प्रेम साई भावनाएं सारी हुई तेड़ी जे इंसान अंदर हुई आई कने से भी अपनी भाषा च जे ऐसे कि दूजे ने संवाद जे ऐसे कर दे आए कने अहें जो भी तिन रिया भावना रा सम्मान जे ऐसे करना चाहिंदा या।
0: बिल्कुल करें आहा अपने रोजमर्रा दे जीवन च कुछ छोटी छोटी गल्लां करी ने पशु पक्षियों दे प्रति अपनी करुणा जे ऐसे दिखाई सकदे, पे जियां जी तुहां बोले ना पे मैं आलणे बनाई थी ओ कने तियां
1: आओ
0: पानी रखी थी आ, ते पेड़ जे आ जियां आश्रय कने भोजन दी व्यवस्था करी ने जे ऐसा है आहा अपने पशु पक्षियों दे प्रति जे ऐसे करुणा दी भावना जे ऐसा है प्रकट करी सकदे।
1: बिल्कुल कने कई देखा हरे आवारा पशु जे से हरे खेतों खुआड़िया च या खाली जगह पर सड़कों पर जे ऐसे भी अजकल घूम रहे हुए आए तो पे कई बार क्यों पे देख तिना कने क्रूरता जे ऐसे उई जाई आए पे तिना जो मारा पीटा है दड़वाए तो पे तिना ने देख क्रूरता नहीं दसने चाहिए आए कने तिना जो अकारण जे ऐसे हाँ जो सताना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल कने तिया दे प्रति जे ऐसे है जिया सहानुभूति भरा व्यवहार जे ऐसे करना चाहिए ना, हाँ जो जिया सूझे ना कोई कुछ जो कोई बीमारी है लगी हो या कई
1: पशु
0: बारी
1: है
0: होंगे
1: जो
0: ना पता लगी आंदा पे
1: आओ
0: कोई
1: कोई
0: घायल पशु है
1: या पक्षी
0: ता
1: घायल
0: हाँ
1: हाँ
0: तो तिस जो जिया पशु चिकित्सक जो सदी ने ना तिना दी मदद करना चाहिए।
1: बिल्कुल या जिया गैर सरकारी संस्थाएं पे तिन्हरी मदद भी अहें ले सकें कने आपू भी तिन्हरी मदद जे आ देखभाल जे ऐसे अहें करी सकें आए।
0: बिल्कुल जियां कई बारी होंगे ना छोटा मोटा जियां कुती घाव जे ऐसे बने होंगे तिना दे शरीर पर, ता हाँ जियां हल्दी वगैरह जेड़ा भी कुछ लगांदे ना अपने गांव पर तो तिना जो भी लगाई सकदे।
1: आओ कने सौगी भी देखो हाँ अपने संविधान की गल करिए हरे संविधान च भी पशु पक्षियों के संरक्षण ताई जे ऐसे प्रावधान है कने जी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जे ऐसे भी बनाए रही है।
0: हाँ ताकि जंगली जेड़े भी जानवर हैं पशु पक्षी हैं तीन जो सुरक्षा जे से मिल है।
1: मिले कने देखो पई पशु पक्षी जी ऐसे तियां हरे बोलते भी खाद्य श्रृंखला कने पर्यावरण जो संतुलित रखने ताई जी भी बड़ी मदद करते आए।
0: हाँ पे दिखा ना एक पक्षी जी ऐसे है जिया फसलां पर कीट पतंगे जे ऐसा लग दे ना तो तीनों जो खाई ने फसलां दी रक्षा कर दे,
1: बिल्कुल
0: कने बीजां दे प्रसार च भी मदद कर दे,
1: बिल्कुल
0: कने अगर हाँ तीनों दे प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र जे है से बिगड़ी आना कने तिसदा सीधा असर जे है से मानव जीवन पर पौना।
1: बिल्कुल कने सौगी पे देख पशु पक्षियां कने समय बिताना जे आती नरी देखभाल करना आ जो मानसिक शांति भी प्रदान करा ही आ कने अरे जेडे जखा बच्चे अगली पीढ़ी थी ना जो बचपना ते यहां जानवर रे प्रति करुणा कने जिम्मेदारी री भावना जे है से भी विकसित करने चाहिंदी आई कि क्योंकि बच्चे अगर जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होए तो बड़े होने से और अधिक जिम्मेदार मिलनसार ने मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण व्यस्क जैसे बनी सकता है।
0: वही ठीक लाया दिख ना मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पौधे ही हूँ दिख हाँ पशु पक्षी जो दिखा देते ना हूँ मैं ही चिड़िया की चीं चीं सुना दी तो मैं जो बड़ भारी शांति मिले ना भाई इतनी जे ऐसा है पशु पक्षी तो है मना जो शांत करा दे कने भाई दिखा ना अगर हाँ इन्हें कन्ने प्यारे का व्यवहार करिए तो यह भी हाँ प्रति प्यारे की भावना ही दर्शाते कई बार दिखा नहीं भाई हाँ जे ऐसा पशु पक्षी चारा या पानी रखा दे तो सह हाड़े वाल आई ना जे ऐसे बड़े छैल करने बहने भी इं लगता भाई है दसा दे धन्यवाद करा दे।
1: बिल्कुल तो जमना पी दिख पशु पक्षियों की गलों का बड़ी छैल लग रही ना दिख मिठड़ा मिठड़ा लोक गीत आवा रेडुआ पर मधुर मधुर जे इसे भी धुन जे असें हाँ लगा लेने आए कने सुने लेने आई है भाई दिख लोक गीत जरूर सुनना
0: सुनते ना

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनकां ग्राईदियां। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:40 और 41 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश बेहद निंदनीय है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इस बीच आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और तीन राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
1: 26, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शन होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्यूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

0: सरकार की जनहितैषी योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग कर उसे राज्य सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के झूठे प्रचार प्रसार में लगा रही है, जबकि प्रदेश की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से 15 जून तक स्वगणना का कार्य किया जाएगा। इसमें लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
1: जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहाँ से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ रही है। विनय कुमार ने कहा कि देश में बढ़ते तेल व एलपीजी के मूल्यों ने देश को गंभीर संकट में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई, जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
2: ये जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे।
0: आज जैव विविधता दिवस है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की

0: मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत, कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। जीवों के लिए प्यार जगाओ, जंगल में ना आग लगाओ।

जीव जंतुओं की करोगे जब रक्षा, तभी तो होगी पर्यावरण की सुरक्षा। पेड़ पौधे मत करना नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अगर बनाना है भारत को महान, तो पर्यावरण का रखो ध्यान।

प्रकृति का मत करो शोषण, यही करती है जीवों का पोषण। पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान, रखो पर्यावरण का मान।

आओ हम सब मिलकर पर्यावरण बचाएं, सभी का जीवन सुरक्षित बनाएं। जन जन में है चेतना लाना, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना।

0: देश को विकसित बनाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है, अब से लेकर रात्रि 8:44 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: कंपाउंडर, अरे तू बैठा बैठा क्या कर रहा है?
1: कुछ नहीं, मक्खी मार रहा हूँ डॉक्टर साहब।
0: अरे मक्खी के साथ थोड़ी झक भी मारा कर, मुझे लगता है तू बिना नहाए ड्यूटी पर आता है, इसीलिए हमारे अस्पताल में कोई मरीज नहीं आता।
1: अजी मरीज कहाँ से आएंगे, आजकल कोई बीमारी होती नहीं।
2: कौन बोलता है डॉक्टर बजराज कि देश में बीमारी नहीं होती है? देश में कई प्रकार की भीषण भीषण बीमारियां फैली हुई हैं, क्या आप डॉक्टरों को पता तक नहीं?
0: क्या बोलते हैं आप महाशय, भीषण बीमारी? कहाँ, किधर? कंपाउंडर साहब को कुर्सी पर बैठाओ, मेरा मतलब है कुर्सी लाओ साहब के लिए।
1: लीजिए बैठिए।
2: साहब नहीं, हमारा नाम मणि शंकर है, प्यार से लोग बाग हमें मणि बाबू भी कहते हैं। हाँ तो मैं बोलता था डॉक्टर बजरंग
0: जी,
2: देखो ना अब हमारे घर में 8 आदमी हैं, सब के सब बीमार, 4 सीरियस बीमार और 4 लाइट सीरियस बीमार।
0: तो लाइए ना, सबको ठीक कर देंगे। हमारी दवा खाकर जो भी गया वो वापस नहीं आया, मेरा मतलब है फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा जी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबको एक साथ लाऊं या एक एक करके लाऊं?
0: एक एक करके लाइए साहब।
2: ठीक है ठीक है, तो मैं फिर लेकर आता हूँ। अच्छा
0: जी। अरे कंपाउंडर, तू रोज मक्खी मारा कर, अरे ये शगुन तो बहुत ही अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊं?
0: आइए आइए आइए आइए। वाह वाह।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है लवंग लता, उम्र 23 बरस है।
0: माफ कीजिएगा देवी जी, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपको क्या होता है?
3: दूर रहो, मुझे पुरुषों की छाया से नफरत है।
0: बाप रे बाप, ये तो काटने को दौड़ती मुनि बाबू।
2: डॉक्टर बजरंग, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारिए, ठीक ठीक और बराबर जवाब देगी।
0: अच्छा बेटी घबराओ नहीं, क्या होता है तुमको?
3: मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगी। आज तक जितने जुल्म पुरुषों ने स्त्रियों पर किए हैं उन सब का गिन गिन कर बदला लूंगी। पुरुष खाना बनाएंगे, औरतें नौकरी पर जाएंगी, पुरुष चूड़ियां पहनेंगे, औरतें शमशीर उठाएंगी। भारत की नारी जिंदाबाद, पुरुषों का बायकॉट हो, पुरुषों का सर्वनाश हो।
2: देखा डॉक्टर साहब, इस प्रकार के वाचन रोज घर में करती रहती है।
0: मुनी बाबू, इनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, आजकल ये बीमारी फ्लू की तरह फैली हुई है। इस बीमारी को लवेरिया कहते हैं।
2: लवेरिया?
0: जी हाँ लवेरिया।
2: अच्छा तो डॉक्टर बाबू इसका कोई इलाज?
0: इलाज जी हाँ है, मैं तो हर एक तरह के इलाज करता हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक।
2: इसमें इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे पावरफुल जरा सस्ता इलाज कौन सा है?
0: तो सुनिए, सूरज की किरण 5 तोला, हवा का झोंका 4 माशा और गुलाब की खुशबू 3 रत्ती, इन तीनों को काले पत्थर के तेल में मिलाकर गोली बनाइए और जब मूसलाधार बारिश होती हो तो मैदान में रखकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली सुबह उठने से पहले, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी।
2: ठीक तो हो जाएगी, पर ये सब वस्तुएं, गुलाब की खुशबू, सूरज की किरण मिलेगी कहाँ से?
0: नहीं मिलेगी तो इसको एंटी लवेरिया का इंजेक्शन दो, ठीक हो जाएगी, समझे? जाइए कल दूसरे पेशेंट को लाइएगा। कंपाउंडर अरे जरा रोज मक्खी मारा कर, समझा?
1: अरे कल से मैं और भी मक्खियां मारा करूंगा।
2: डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू मैं आ गया।
0: आ गया?
2: ये हमारा सबसे बड़ा लड़का है, कौड़ी शंकर।
0: कौड़ी शंकर?
2: डॉक्टर साहब को नमस्ते करो, बताओ कि क्या होता है बेटे तुम्हें?
1: अरे डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: कल अपना घोड़ा शॉर्ट हेड से मार खा गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। घोड़े की जन्म पत्री भी ज्योतिषी को दिखाई थी, मंगल नवे घर में स्ट्रांग होने से जीतने के चांस ब्राइट थे, पर राहु की दशा खराब होने से हार गया। डॉक्टर कल रात को मैंने एक सपना देखा, उसमें देखा कि कुएं के पास चारपाई बिछी है, तो कुएं का तो गोल होने की वजह से शून्य हुआ और चारपाई का चौका हुआ। हाँ तो बताओ बताओ डॉक्टर, फोरकास्ट पूल खेल दूं क्या? मैं अभी भी रेस की किताब लेकर आया, आप जाइए नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जाइए नहीं, मैं अभी भी आया।
0: मुनि बाबू
2: जी,
0: इसको गैम्बुलेंसर हो गया है।
2: अच्छा?
0: ये रोग बिल्कुल कैंसर के जैसा होता है, इसका एक ही इलाज है कि इसके सर पर बर्फ से भरा हुआ मटका रखिए ताकि इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। जाइए कल दूसरे मरीज को लाइएगा।
1: अच्छी बात है। हाँ। कल दूसरे को लाऊंगा।
0: हाँ, जाइए।
4: डॉक्टर साहब, मणिशंकर जी आए हैं केस नंबर 3 लेकर।
0: अच्छा, आने दो।
2: आओ बेटे, आओ आओ। डॉक्टर साहब
0: जी आइए।
2: ये मेरा सबसे छोटा लड़का है, जटाशंकर।
0: जटाशंकर?
2: एंड ही इज आउट।
0: कौन आउट?
2: सलीम इज आउट।
0: ओहो, स्कोर क्या है?
2: डोंट यू नो, यस्टरडे इंडिया वाज 4-0 for 8 एंड टुडे जॉनसन बॉलिंग टू बेदी, फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, बेदी हुड द बॉल एंड बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन एंड बाउंड्री लाइन इज कमिंग टुवर्ड्स द बॉल एंड ही इज आउट। बेदी इज आउट।
0: अरे मोनी बाबू, इसको तो क्रिकेटिया हो गया है, बीमारी बिल्कुल पायोरिया जैसी है। इसके मुंह में सुबह से शाम तक 24 घंटे क्रिकेट की बदबू आती है।
2: अच्छा, तो इसका इलाज डॉक्टर साहब?
0: इसका इलाज बड़ा सीधा है। टेस्ट मैच में खेली हुई गेंद लाओ, उसको जलाकर मंजन बनाओ और उस मंजन से इसके दांत साफ कराओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा।

0: अरे कंपाउंडर
1: जी साहब,
0: ऐसा लगता है कि तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह एक साथ ही निकल जाएगी। इतने मरीज आ गए हैं, वाह वाह वाह वाह।
1: 6 महीने की नहीं, 7 महीने की बाकी है।
0: ठीक है ठीक है, 7 महीने की सही। मोनी बाबू आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब
0: जी जी,
2: ये मेरा बड़ा लड़का करोड़ी शंकर है। परसों जो बड़ा लड़का कौड़ी शंकर आया था ना, ये उसका जुड़वा भाई है।
0: ओ हो हो हो, अच्छा अच्छा। हाँ तो कौड़ी शंकर जी, हाँ तुम्हें क्या होता है बेटे?
3: डॉक्टर मुझसे ये पूछिए कि मुझे क्या नहीं होता है।
0: अच्छा,
3: एक साथ 10-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ।
0: 10-10
3: पर बैड लक
0: हो
3: मेरा नहीं, उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज के इन तमाम एक्टरों से कम खूबसूरत हूँ मैं?
0: अरे नहीं भाई, वाह वाह, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हैं।
3: खूबसूरती की बात छोड़िए ना डॉक्टर साहब, एक्टिंग देखिए आप मेरी, एक्टिंग
0: एक्टिंग
3: कॉमेडी ट्रेजेडी रोमांस मर्डर मिस्ट्री हर प्रकार की एक्टिंग कर सकता हूँ। ठहरिए, पहले कहानी सुनिए। कैमरा लगा हुआ है और ट्रॉली फॉरवर्ड, कैमरा राजा भाई टावर, रात के 12 बजे, बैकग्राउंड म्यूजिक धनसक धनसक धनसक धनसक, साई साई सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक हसीना अपनी पायल की झंकार का मधुर संगीत बजाती हुई गुजरती है। हीरो की एंट्री, हीरो हीरोइन के पास आकर कहता है, ऐ हसीना तू अपनी पायल को क्यों बजा रही है, क्या तुझे पता नहीं कि टावर के नीचे साइलेंस जोन है? हीरोइन कहती है, मुझे तो याकूब जान कहते हैं। इसके बाद क्रैक क्रैक विलन की एंट्री, विलन पिस्तौल से फायर करता है, कैमरा गोली के साथ पैन वाइप डिसॉल्व, चिड़िया चहक रही हैं, बुलबुल महक रहे हैं, और
0: अच्छा और आगे
3: पैसों का पहले फैसला कर लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा।
0: ओहो
3: अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक्टिंग देखिए।

0: बन में लैला प्यारी बसी मेरे
1: बस बस बस बस बहुत बहुत हो गया बहुत मोनी बाबू इसे फिल्मोनिया हो गया है।
2: फिल्मोनिया? ये फिल्मोनिया क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: जी हाँ, ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। इसका इलाज बड़ा सीधा है, हर तीसरे दिन नाई को बुलाकर इसके सर पे उस तरह फिरवाकर चमन गोटा कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
2: ठीक हो जाएगा ना?
1: हाँ।
2: अच्छा तो मैं अब अपनी पत्नी को लाता हूँ। देश की वर्तमान हालत पर उसको बिचारी को दिन रात चिंता लगी रहती है, लेकिन वो इस वक्त तो आपके वेटिंग रूम में जरा मेकअप कर रही है, इसलिए पहले आप मुझे ही देख लीजिए।
1: आप तो अच्छे भले दिखते हैं मुनी बाबू।
2: डॉक्टर साहब, हर शायर अच्छा भला दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, मैं पहला शायर हूँ जिसका पहला ही गीत इतना हिट हो गया

0: कि रेडियो से हफ्ते भर में छह छह दफा बजता है।
1: ऐसा कौन सा गीत है जी इतना हिट के जो छह छह दफे बजता है? अच्छा मोने बाबू आप काम क्या करते हैं?
0: अजी डॉक्टर साहब काम काज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। पिताजी इतना पैसा छोड़ गए हैं, इतना पैसा छोड़ गए हैं कि कमाने तक की जरूरत नहीं।
1: ओहो तो आपके घर की सारी बीमारियों का कारण आपके पिताजी का छोड़ा हुआ पैसा है?
0: है? क्या बोलते हो?
1: जी हाँ, ये लवेरिया, गैम्बलेंसर, क्रिकेटिया और फिल्मोनिया, इन सब बीमारियों की जड़ घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपके पिताजी के छोड़े हुए सारे पैसे आप किसी स्कूल में दान दे दीजिए तो आपके घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारे घर वालों को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो सारे ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके घर में फुर्सतिया रोग जोरों पर है।
0: पर डॉक्टर साहब ये पैसे जो स्कूल में दे दिए तो सारे बच्चों को बीमारी लग गई
1: तो किसी अस्पताल को दे दीजिए।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब अस्पताल में ही देना है तो क्यों ना मैं आप ही के अस्पताल में दे दूं?
1: जी मेरे मुझे
0: डॉक्टर साहब मैंने अभी पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ देने की बात की, आप धड़ाम से बेहोश हो गए। ओ इन अनोखी बीमारियों का अनोखा इलाज करने वाले डॉक्टर बजरंग, कहीं आपको वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसको कहते हैं बेहोशिया?

अनोखी बीमारियां, सुमन माधुरी लिखित ये नाटिका अभी आपने सुनी, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी गीत सुनिए। युगल स्वर अलका याग्निक और उदित नारायण के हैं। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए मदन पाल का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत, युगल स्वर हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के, फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और अब जतिन ललित का संगीत, समीर के बोल, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम वास्तव।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंदा और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं और ये फिल्म है दिलवाली।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्यान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें। ये फिल्म है दिल चाहता है। इस गीत को जावेद अख्तर ने लिखा है और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक और रात्रि 9 सुनिएगा News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में दो विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। यह आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

यावस्ती मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम कटी पतंग, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव बर्मन की।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना, फिल्म का नाम था उमर कैद। ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम पिया का घर, गीत रचना आनंद पक्षी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ताजमहल के लिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के ज़माने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

0: कैसी तबीयत है जनाब की?
1: संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूज़िक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेऊन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोकधुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानिना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के ठीक 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पीजी जोग की प्रस्तुति। प्रस्तुत है राग किरवानी और तबले पर संगत कर रहे हैं अरुण घोषाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध वायलिन वादक वीजी जोग का राग गिरवानी। तबले पर संगत थी अरुण घोषाल की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 10:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर आपके रेडियो सेट पर।

चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को आरती की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद करते हैं आपका कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। तो चलिए करते हैं आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और करते हैं शुरुआत आज के इस खास कार्यक्रम की, और आप बने रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ।

तेरे सीने से लगकर तेरी आरजू बन जाऊं, मैं ना रहूं बस तू ही बन जाऊं।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक में और अब पूरे हैं हम।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो दोस्त आरती के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।